0: ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, कोर्ट का वक्त खत्म हो चुका है। इस मुकदमे का फैसला अगले महीने की 18 तारीख को सुनाया जाएगा।
1: ओ, मेरे कत्ल की पूरी तैयारी कर ली तुमने?
2: तुम भी कातिल, हम भी कातिल। अब वक्त जाया मत करो, अपने जिस्म को इन कपड़ों की कैद से आजाद कर दो। तुम्हारी जवानी की किताब को कर

0: Radiation, the number one station for the boggle for Asian.
1: क्या हुआ बेटी? क्या बात है?
2: अंकल, अब विशाल, विशाल प्लॉट नंबर 13 में फंस गया है।
1: क्या हुआ विशाल को?
2: अंकल, अंकल, वो औरत नहीं है, वो एक प्रेत आत्मा है। अंकल, अगर विशाल को बचा लीजिए, नहीं तो डायन उसे मार डालेगी।
1: अच्छा, अच्छा, एक मिनट, एक मिनट।
3: हाँ, इंस्पेक्टर बलदेव स्पीकिंग।
1: देखिए मैं गुलमोहर लेन प्लॉट नंबर 12 से सक्सेना बोल रहा हूँ। यहाँ प्लॉट नंबर 13 में एक औरत मेरे बेटे को मार देना चाहती है।
3: क्या कहा? प्लॉट नंबर 13?
1: जी हाँ।
4: प्लीज जरा जल्दी आइए।
3: हाँ ठीक है, मैं अभी आता हूँ।
2: चलिए
0: बलदेव, रिस्पेक्ट टू यू ब्रो। प्लॉट नंबर 13, प्लॉट नंबर मेरा, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट एट, नंबर मेरा। बट या, प्रेस द बटन करेक्टली। दिस ट्रैक Verdian, the last track, got a message coming. Wang Lundi the Bawa, Desi Crew, Bunty Baines, on My Roots. This track over here, Verdian, just means enemies. Explicit lyrics warning. X Fader. So, who's he on the track with? X Fader. Featuring Rumu Hans. Okay, let's do it. Let's go. Always here to support, man.
5: Radiation, the number one station for the boggle Asian.
6: One time.

0: मेरी माँ ने मेरे को कैलकुलेटर दिया था। आ कोई एमीटर कैलकुलेटर नहीं सीखा, आ टेक्सस इंस्ट्रूमेंट साइंटिफिक कैलकुलेटर सीखा, बड़ी प्रोफेशनल थी। मैं दो तीन महीने वास्ते मंगता सीखा, चंगी तरह माँ ने तंग कर दिया, माँ ने पता सीखा, मेरी आदत नहीं चीजा मंगने। जो माँ ने मैंने इतना बड़ा तोहफा दिया कैलकुलेटर, मैं फटाफट जाके उन्होंने चप्पी मारी, पता उन्होंने की किया, वो वापस मैंने चप्पी मारी। हमेशा मैं सोचता सी मेरी माँ मैंने प्यार नहीं करती, मेरिया छोटिया पैरों ने हमेशा चप्पियां मार दी थी पर मैनू नहीं।
1: I told my girl I was on Radiation.
2: Hey, this is Just Fritz, and you're listening to Radiation, the number one station for the Asian invasion.
3: Meri kudi, odi sehat theek nahi. Addi raat mini skirt pa ke clubban ch cheeka maar ke tapdi aa.
4: Koi na veera, assi desired effect nu sadunge.
5: ਉੱਪੜ ਵਾਲੇ ਕਾ ਨਾ ਜੱਫੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, 500 ਪਾਉਂਡ ਮੈਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਲਓ, ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਊਂਗੇ। ਤੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਰਡ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕਮਰਾ ਕਿੱਥੇ ਆ?
3: ਇੱਥੇ ਆ ਉੱਪੜ, 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਦੀ ਬੁੜਕੀ ਖਾਈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਬੜਕਰ ਚਿਪਸ ਚੱਬੀ ਜਾਂਦੀ ਆ।
5: ਅੱਛਾ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ, ਸ਼ਕਲ ਇਜ਼ ਰਾਦਰ ਪੈੜੀ and top lip very hairy. 2000 pound daan kar lo mere naal jappo.
6: The power of radiation compels you. Random guys of Soho Road compel you. Pearly uncles with x-ray glasses compel you to leave this girl's forsaken body so she's free to dress sensibly and dance to proper music on
4: radiation, the number one station for the Bagel Asian. Bagel Asian.
7: Hi, yeah, I just left the date, and I don't know, am I asking for too much? Like, this guy was really cute, and he was a musician.